हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना।

वाके गुरु वाके गुरु वाके गुरु जी बोलो वाके गुरु वाके गुरु वाके गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए।